0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्पेन की प्रेरितिक यात्रा पर संत पापा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग अपने स्पेन की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Priye bhaiyo evam behno, suprabhat aur suswagatam. Main aap sabhon ke sang pichle saptah Spain, Madrid, Barcelona, Montserrat aur Canary Dweep ki preritik yatra par अपने चिंतनों को साझा करना चाहूँगा। अफ्रीका के 4 देशों की अपनी लंबी यात्रा के बाद इस समय मैंने एक यूरोपीय देश की एक प्राचीन और ख्रिस्तीय परंपरा की समृद्धि में अपने को सराबोर किया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वर्तमान समय में स्पेन ने जो अपने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। हर जगह संत पापा का आतिथ्य जोश और सुनने की उत्सुकता से किया। इसके लिए मैं ईश्वर और पूरे स्पानी लोगों, राजा और नागर अधिकारियों, धर्माधिशकों और कलिसियाई समुदायों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूँ। संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर के लोगों ने मुझे अपने विश्वास और प्रेम की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा वृहद सांत्वना प्रदान किया। अपनी ओर से मैंने रोम के धर्माध्यक्ष स्वरूप विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए इस बात की सुनिश्चितता प्रदान की कि वे एकता को बढ़ावा देते हुए वार्ता और विभिन्नताओं में एकता के माध्यम से हर तरह के विभाजन और संघर्षों पर विजय प्राप्त करें। यह संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की एक विशेष सेवा है, एक सेवा जो हर समय उन देशों के कलिसियाई और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने में एक विशेष अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। स्पेन के संबंध में संत पापा ने कहा कि मैंने इस बात को देखा कि हर उम्र के कितने ही लोगों ने संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का खुशी में इंतजार किया। हर जगह मैंने असंख्य लोगों की भीड़ देखी जिन्होंने बहुत ही गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया। हम इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं और यह हमारे लिए विचारणीय है। निसंदेह इस तरह की सहभागिता हमारे लिए सर्वप्रथम स्पानी लोगों के विश्वास को प्रकट करती है, संत पापा ने कहा। उन्होंने कहा कि वही मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह इस तथ्य को प्रकट करती है। मेरा मानना है कि यह एक सच्ची और गहरी नींव पर एकता पाने की बड़ी जरूरत को दिखलाता है, जो ना तो सोच पर आधारित है और ना ही किसी खास फायदे पर ही। यह नींव आखिरकार हमें यीशु ख्रिस्त में प्राप्त होती है, जिसे हम सुसमाचार के जरूरी सांस्कृतिकरण के माध्यम लोगों के जीवन में प्रसारित कर सकते हैं। यह ऐसा कर सकता है क्योंकि इसका संदेश दोनों जरूरतों का प्रत्युत्तर देता है, एक सच्चाई की खोज और दूसरा न्याय की प्यास। मैड्रिड और बार्सिलोना में हमारी भेंट एक बड़े महागिरजाघर के साथ साथ एक आधुनिक स्टेडियम में हुई। हमने मोंसेरात के आबे में रोजरी प्रार्थना की। हमने सग्रादा फामिलिया में ख्रिस्तियाग अर्पित किया, जो एक शानदार निशानी पत्थरों और दीप का मधुर मिलन है, अपने में हर एक को ख्रिस्तीय रहस्य के बारे में कहता है। प्राचीन और आधुनिकता का यह मिलन, संत पापा ने कहा, ख्रिस्तीय परंपरा और समकालीन परंपरा ने मुझे यूरोप के असली रूप, उसकी बेशुमार दौलत को एक जीवित सच्चाई के तौर पर, ना कि पुरानी बातों के रूप में देखने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह एक धरोहर है जिसकी हमें सावधानी पूर्वक सुरक्षा करने की जरूरत है, जिससे यह आज के वैश्विक दुनिया में महत्वपूर्ण चुनौतियों, शांति, समग्र पारिस्थितिक समानांतर और सतत विकास तथा मानवीय सम्मान के आधार पर उपयोग में लाई जा सके। ये वे सारी चुनौतियां हैं जिन्हें वैटिकन द्वितीय महासभा ने पहले ही स्पष्ट रूप में चिन्हित किया था और जिसके संबंध में कलीसिया के धर्म सिद्धांत ने बाद में जिक्र किया, और वर्तमान में जिसकी चर्चा विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास करता है, जिसका लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा करना है। संत पापा लियो ने कहा कि विभिन्न मिलनों के द्वारा मैंने संत पापा के विचार अनुरूप आज की मानवता में सुसमाचार की आशा को सुनने की जरूरत को पाया, जो विकास के नकारात्मक रूपों द्वारा हो रहे बुरे नतीजों से बुरी तरह परेशान है। यह आवश्यकता जो विभिन्न साक्ष्यों में अभिव्यक्त हुई, जिसे मैंने सुना, कभी कभी प्रभावित करती तो कभी शिक्षा प्रदान करती है। इस जरूरत को मैंने छोटे और गरीबों के चेहरों में भी देखा जिनसे मेरी मुलाकात हुई। पल्ली का वह बालक जिसने अपनी चिट्ठी को मेरे लिए पढ़ा, कुछ दुराचार के शिकार जो अपने को सोने जाने की मांग करते हैं, कैद खाने की वे बंदी जिन्होंने मेरा इंतजार किया, युवा जो अपने को चिंतित और आशाओं से भरा पाते हैं, आतिथ्य केंद्र कनारी द्वीप के प्रवासी गण। संत पापा लियो ने कहा कि कनारी महाद्वीप हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था, जहां मुझे एक व्यापक जानकारी दी गई। मुझे द्वीप समूहों की एक ओर भौगोलिक जानकारी मिली तो दूसरी ओर स्थानीय कलीसिया के द्वारा इस सच्चाई से अवगत कराया गया, जो एक वृहद संख्या में बाध्य प्रवासियों का स्वागत करते हैं, जो मुख्यतः अफ्रीका से आते हैं। हम जानते हैं कि प्रवासन की घटनाएं अपने में जटिल हैं और उसके लिए संगठित और सहयोगिक कार्य परियोजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन यह परिभाषा हमारे लिए एक अलग विस्तृत दृष्टिकोण को खोलती है। यह हमें यह समझने के योग्य बनाती है कि कैसे हम आज की दुनिया में सुसमाचार का पुनः अध्ययन करने को बुलाए जाते हैं, एक दूसरे के संग किस तरह अपनी संस्कृति के उपहार को साझा करते हैं, और उन सारी चीजों में विशेषकर ख्रिस्त के कौन से संदेश फलहित होते हैं। बहुत से फलों में हम इसमें एक विशेष फल लोगों और देशों के बीच में वार्ता को पाते हैं, भ्रातृत्व की भावना में मिलन, जो हमें एक दूसरे के मूल्यों को पहचानने और उनकी प्रशंसा करने में मदद करता है। यह अपने में एक सहज मार्ग नहीं है, यह हमसे सद्भावना और ईश्वर से सहायता की मांग करती है, लेकिन यह हमारे लिए एक मार्ग है जो हमें प्रेम की सभ्यता के मार्ग में अग्रसर करता है। संत पापा लियो ने कहा कि मेरी प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य अलजादा ला मिरादा, अपनी आंखों को उठाएं था। यह यीशु के शब्द हैं जिसे उन्होंने अपने प्रथम शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जिससे वे लोगों और भीड़ में जीवन, सच्चाई और पूर्णता की चाह को देखने के योग्य हो सकें। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन वचनों को मेरे लिए भी कहते हैं और उनकी कृपा से मैंने इस प्रेरितिक यात्रा में उसका अनुभव किया है। आज मैं आप सबों को निमंत्रण देना चाहूंगा कि हम अपनी आंखें उठाएं। हम यीशु से अपने पड़ोसी की ओर, लोगों और दुनिया की ओर देखना सीखें। यीशु की निगाहों से, अर्थात प्रेम, सम्मान और करुणा की भावना से। संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा के अंत में सभों के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त किए जिन्होंने उनकी प्रेरित यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना की, विशेषकर स्पेन के मठवासी धर्म बहनों के लिए। उन्होंने कहा, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनकी संख्या बहुत है। संत पापा ने कहा कि आप निरंतर प्रार्थना करना जारी रखें जिससे कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा वह बीज अत्यधिक फल उत्पन्न कर सके जिन्हें मैंने बोया है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार को अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो 14वें ने ईरान और अमेरिका से बातचीत और सहयोग के रास्ते पर चलने की अपील की। लगभग 4 महीने की लड़ाई के बाद दोनों देशों के शुक्रवार 19 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। संत पापा ने कहा, मैं इस्लामिक गणतंत्र ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते पर पहुंचने का खुशी के साथ स्वागत करता हूं, जिस पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किया जाएगा। यह सब्र और बातचीत के काम का एक हौसला बढ़ाने का नतीजा है। संत पापा ने उन मध्यस्थ देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने शांति बातचीत को आसान बनाने के लिए काम किया है। स्विस सरकार के मुताबिक यह समझौता बर्गेनस्टॉक के एक होटल में होगी। बर्गेनस्टॉक एक पहाड़ है जहां से लुसर्न झील दिखती है और जहां पहुंचना मुश्किल है। संत पापा ने इस समझौता ज्ञापन पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह समझौता मध्य पूर्व में आपसी भरोसे, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे लोगों के बीच बातचीत और सहयोग के रास्ते बढ़ेंगे। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें देश के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया गया। ईरान ने जवाब में इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेस और सहयोगियों पर जवाबी हमले किए, जबकि होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में रुकावट डाली। इसके बाद संत पापा लियो ने यूक्रेन में बढ़ती मौतों पर दुख जताया, क्योंकि रूस देश पर, खासकर यूक्रेनी शहरों पर अपने हमले तेज कर रहा है। संत पापा ने कहा, कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं और बचाने वाले भी मारे गए हैं। कलीसिया और सांस्कृतिक विरासत की जगहें आग की लपटों से तबाह हो गई हैं। मैं उन सभी के करीब हूं जो अपने प्रियजनों के लिए दुखी हैं और घायलों के साथ हैं। संत पापा उन लोगों के साथ हैं जो हिंसा के बीच भी हिम्मत के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। संत पापा लियो 14वें ने सभी को यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं सभी से यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि यह युद्ध खत्म हो जाए। आइए हम प्रभु से बातचीत के रास्ते खोलने, नफरत को खत्म करने और एक सही एवं स्थायी शांति को मुमकिन बनाने के लिए कहें। और संत पापा लियो 14वें ने बुधवारी आम दर्शन समारोह से पहले लैटिन अमेरिकी संगठनों, बाल संरक्षण में अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह संगठन गलत व्यवहार को रोकने और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। संत पापा ने कहा कि उन्हें अलग अलग लैटिन अमेरिकी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। संत पापा ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि कलीसिया में सभी जगहें, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या आभासी, सच में यीशु ख्रीस्त के साथ एक फायदेमंद मुलाकात की जगह बने जो डर, भय या संदेह से मुक्त हो। संत पापा ने उन्हें यह सोचने के लिए आमंत्रित किया कि कैसे पहले शिष्य, जब वे यीशु मसीह से मिले, वे मोहित हो गए थे। एक ऐसा पल जिसने उनकी जिंदगी को खास बनाया और उन्हें बदलने का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उन्होंने बिना किसी झिझक के खुद को यीशु को समर्पित किया। संत पापा ने कहा कि वह अनुभव कोई पुरानी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग फिर से जी उठे प्रभु से मिलने और प्रभु के साथ प्यार का सच्चा अनुभव करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन इस पाने के लिए, संत पापा लियो ने जोर देकर कहा, यह जरूरी है कि हमारे पास सुरक्षित जगहें हों। संत पापा ने कहा कि दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाता है और किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक और इंसानी विकास में रुकावट डालता है। संत पापा ने कहा कि प्रभु के चेतावनी पर ही केंद्र ने अपना मिशन शुरू किया। जब मसीह ने चेतावनी दी कि छोटों के लिए बदनामी का कारण न बने, संत पापा ने याद किया कि पिछले हफ्ते स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान उन्होंने धर्माध्यक्षों से
उन लोगों के दर्द के बारे में बात की थी जिन्हें उन लोगों ने चोट पहुंचाई है, जिन्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, और उन्हें ऐसी स्थितियां बताया जिनसे पहले कलीसिया समुदाय को सुनने, सच्चाई, न्याय, मुआवजे और रोकथाम एवं देखभाल की संस्कृति के लिए और ज्यादा पक्के इरादे के साथ जवाब देने के लिए कहा जाता है। उधर कास्टल गंडोल्पो में परमाध्यक्ष निवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने अमेरिका और ईरान के बीच हालिय समझौता ज्ञापन, स्पेन की अपनी हालिय प्रेरितिक यात्रा, प्रवास के विषय और SSPX के आसन धर्माध्यक्ष अभिषेक पर विचार किया। कास्टल गंडोल्पो में विल्ला बारबरेनी से बाहर खड़े होकर, जहां उन्होंने हमेशा की तरह अपना मंगलवार का दिन आराम करने और काम करने में बिताया था, संत पापा उन पत्रकारों से बात करने के लिए रुके। उन्होंने स्पैनिश मीडिया के उन लोगों के साथ अपनी बात शुरू की जो टेनेरिफ से वापसी उड़ान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण अनुत्तरित रह गए थे, जिसके कारण संत पापा लियो को एक अलग विमान से वापस लौटना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बारे में पूछे जाने पर संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर का शुक्र है, कम से कम यह ज्ञापन तो है, जिस पर वे शुक्रवार को आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। और संत पापा लियो 14वें ने इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा मनाए जाने वाले जीवन दिवस 2026 के लिए भेजे गए अपने संदेश में अपने बच्चों, खासकर छोटे बच्चे को खोने का दुख मना रहे माता पिताओं के लिए प्रार्थना और आध्यात्मिक निकटता प्रदान की। संत पापा का यह संदेश वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने 21 जून को होने वाले सालाना कार्यक्रम से पहले महाधर्माध्यक्ष जॉन शेरिंगटन को भेजा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्पेन की प्रेरितिक यात्रा पर संत पापा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग अपने स्पेन की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Priye bhaiyo evam behno, suprabhat aur suswagatam. Main aap sabhon ke sang pichle saptah Spain, Madrid, Barcelona, Montserrat aur Canary Dweep ki preritik yatra par अपने चिंतनों को साझा करना चाहूँगा। अफ्रीका के 4 देशों की अपनी लंबी यात्रा के बाद इस समय मैंने एक यूरोपीय देश की एक प्राचीन और ख्रिस्तीय परंपरा की समृद्धि में अपने को सराबोर किया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वर्तमान समय में स्पेन ने जो अपने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। हर जगह संत पापा का आतिथ्य जोश और सुनने की उत्सुकता से किया। इसके लिए मैं ईश्वर और पूरे स्पानी लोगों, राजा और नागर अधिकारियों, धर्माधिशकों और कलिसियाई समुदायों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूँ। संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर के लोगों ने मुझे अपने विश्वास और प्रेम की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा वृहद सांत्वना प्रदान किया। अपनी ओर से मैंने रोम के धर्माध्यक्ष स्वरूप विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए इस बात की सुनिश्चितता प्रदान की कि वे एकता को बढ़ावा देते हुए वार्ता और विभिन्नताओं में एकता के माध्यम से हर तरह के विभाजन और संघर्षों पर विजय प्राप्त करें। यह संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की एक विशेष सेवा है, एक सेवा जो हर समय उन देशों के कलिसियाई और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने में एक विशेष अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। स्पेन के संबंध में संत पापा ने कहा कि मैंने इस बात को देखा कि हर उम्र के कितने ही लोगों ने संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का खुशी में इंतजार किया। हर जगह मैंने असंख्य लोगों की भीड़ देखी जिन्होंने बहुत ही गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया। हम इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं और यह हमारे लिए विचारणीय है। निसंदेह इस तरह की सहभागिता हमारे लिए सर्वप्रथम स्पानी लोगों के विश्वास को प्रकट करती है, संत पापा ने कहा। उन्होंने कहा कि वही मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह इस तथ्य को प्रकट करती है। मेरा मानना है कि यह एक सच्ची और गहरी नींव पर एकता पाने की बड़ी जरूरत को दिखलाता है, जो ना तो सोच पर आधारित है और ना ही किसी खास फायदे पर ही। यह नींव आखिरकार हमें यीशु ख्रिस्त में प्राप्त होती है, जिसे हम सुसमाचार के जरूरी सांस्कृतिकरण के माध्यम लोगों के जीवन में प्रसारित कर सकते हैं। यह ऐसा कर सकता है क्योंकि इसका संदेश दोनों जरूरतों का प्रत्युत्तर देता है, एक सच्चाई की खोज और दूसरा न्याय की प्यास। मैड्रिड और बार्सिलोना में हमारी भेंट एक बड़े महागिरजाघर के साथ साथ एक आधुनिक स्टेडियम में हुई। हमने मोंसेरात के आबे में रोजरी प्रार्थना की। हमने सग्रादा फामिलिया में ख्रिस्तियाग अर्पित किया, जो एक शानदार निशानी पत्थरों और दीप का मधुर मिलन है, अपने में हर एक को ख्रिस्तीय रहस्य के बारे में कहता है। प्राचीन और आधुनिकता का यह मिलन, संत पापा ने कहा, ख्रिस्तीय परंपरा और समकालीन परंपरा ने मुझे यूरोप के असली रूप, उसकी बेशुमार दौलत को एक जीवित सच्चाई के तौर पर, ना कि पुरानी बातों के रूप में देखने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह एक धरोहर है जिसकी हमें सावधानी पूर्वक सुरक्षा करने की जरूरत है, जिससे यह आज के वैश्विक दुनिया में महत्वपूर्ण चुनौतियों, शांति, समग्र पारिस्थितिक के समानांतर और सतत विकास तथा मानवीय सम्मान के आधार पर उपयोग में लाई जा सके। ये वे सारी चुनौतियां हैं जिन्हें वैटिकन द्वितीय महासभा ने पहले ही स्पष्ट रूप में चिन्हित किया था और जिसके संबंध में कलीसिया के धर्म सिद्धांत ने बाद में जिक्र किया, और वर्तमान में जिसकी चर्चा विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास करता है, जिसका लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समय में मानव की सुरक्षा करना है। संत पापा लियो ने कहा कि विभिन्न मिलनों के द्वारा मैंने संत पापा के विचार अनुरूप आज की मानवता में सुसमाचार की आशा को सुनने की जरूरत को पाया, जो विकास के नकारात्मक रूपों द्वारा हो रहे बुरे नतीजों से बुरी तरह परेशान है। यह आवश्यकता जो विभिन्न साक्ष्यों में अभिव्यक्त हुई, जिसे मैंने सुना, कभी कभी प्रभावित करती तो कभी शिक्षा प्रदान करती है। इस जरूरत को मैंने छोटे और गरीबों के चेहरों में भी देखा जिनसे मेरी मुलाकात हुई। पल्ली का वह बालक जिसने अपनी चिट्ठी को मेरे लिए पढ़ा, कुछ दुराचार के शिकार जो अपने को सोने जाने की मांग करते हैं, कैद खाने की वे बंदी जिन्होंने मेरा इंतजार किया, युवा जो अपने को चिंतित और आशाओं से भरा पाते हैं, आतिथ्य केंद्र कनारी द्वीप के प्रवासी गण। संत पापा लियो ने कहा कि कनारी महाद्वीप हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था, जहां मुझे एक व्यापक जानकारी दी गई। मुझे द्वीप समूहों की एक ओर भौगोलिक जानकारी मिली तो दूसरी ओर स्थानीय कलीसिया के द्वारा इस सच्चाई से अवगत कराया गया, जो एक वृहद संख्या में बाध्य प्रवासियों का स्वागत करते हैं, जो मुख्यतः अफ्रीका से आते हैं। हम जानते हैं कि प्रवासन की घटनाएं अपने में जटिल हैं और उसके लिए संगठित और सहयोगिक कार्य परियोजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन यह परिभाषा हमारे लिए एक अलग विस्तृत दृष्टिकोण को खोलती है। यह हमें यह समझने के योग्य बनाती है कि कैसे हम आज की दुनिया में सुसमाचार का पुनः अध्ययन करने को बुलाए जाते हैं, एक दूसरे के संग किस तरह अपनी संस्कृति के उपहार को साझा करते हैं, और उन सारी चीजों में विशेषकर ख्रिस्त के कौन से संदेश फलहित होते हैं। बहुत से फलों में हम इसमें एक विशेष फल लोगों और देशों के बीच में वार्ता को पाते हैं, भ्रातृत्व की भावना में मिलन, जो हमें एक दूसरे के मूल्यों को पहचानने और उनकी प्रशंसा करने में मदद करता है। यह अपने में एक सहज मार्ग नहीं है, यह हमसे सद्भावना और ईश्वर से सहायता की मांग करती है, लेकिन यह हमारे लिए एक मार्ग है जो हमें प्रेम की सभ्यता के मार्ग में अग्रसर करता है। संत पापा लियो ने कहा कि मेरी प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य अलजादा ला मिरादा, अपनी आंखों को उठाएं था। यह यीशु के शब्द हैं जिसे उन्होंने अपने प्रथम शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जिससे वे लोगों और भीड़ में जीवन, सच्चाई और पूर्णता की चाह को देखने के योग्य हो सकें। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन वचनों को मेरे लिए भी कहते हैं और उनकी कृपा से मैंने इस प्रेरितिक यात्रा में उसका अनुभव किया है। आज मैं आप सबों को निमंत्रण देना चाहूंगा कि हम अपनी आंखें उठाएं। हम यीशु से अपने पड़ोसी की ओर, लोगों और दुनिया की ओर देखना सीखें। यीशु की निगाहों से, अर्थात प्रेम, सम्मान और करुणा की भावना से। संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा के अंत में सभों के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त किए जिन्होंने उनकी प्रेरित यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना की, विशेषकर स्पेन के मठवासी धर्म बहनों के लिए। उन्होंने कहा, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनकी संख्या बहुत है। संत पापा ने कहा कि आप निरंतर प्रार्थना करना जारी रखें जिससे कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा वह बीज अत्यधिक फल उत्पन्न कर सके जिन्हें मैंने बोया है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार को अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो 14वें ने ईरान और अमेरिका से बातचीत और सहयोग के रास्ते पर चलने की अपील की। लगभग 4 महीने की लड़ाई के बाद दोनों देशों के शुक्रवार 19 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। संत पापा ने कहा, मैं इस्लामिक गणतंत्र ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते पर पहुंचने का खुशी के साथ स्वागत करता हूं, जिस पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किया जाएगा। यह सब्र और बातचीत के काम का एक हौसला बढ़ाने का नतीजा है। संत पापा ने उन मध्यस्थ देशों को धन्यवाद दिया जिन्होंने शांति बातचीत को आसान बनाने के लिए काम किया है। स्विस सरकार के मुताबिक यह समझौता बर्गेनस्टॉक के एक होटल में होगी। बर्गेनस्टॉक एक पहाड़ है जहां से लुसर्न झील दिखती है और जहां पहुंचना मुश्किल है। संत पापा ने इस समझौता ज्ञापन पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह समझौता मध्य पूर्व में आपसी भरोसे, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे लोगों के बीच बातचीत और सहयोग के रास्ते बढ़ेंगे। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें देश के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया गया। ईरान ने जवाब में इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेस और सहयोगियों पर जवाबी हमले किए, जबकि होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में रुकावट डाली। इसके बाद संत पापा लियो ने यूक्रेन में बढ़ती मौतों पर दुख जताया, क्योंकि रूस देश पर, खासकर यूक्रेनी शहरों पर अपने हमले तेज कर रहा है। संत पापा ने कहा, कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं और बचाने वाले भी मारे गए हैं। कलीसिया और सांस्कृतिक विरासत की जगहें आग की लपटों से तबाह हो गई हैं। मैं उन सभी के करीब हूं जो अपने प्रियजनों के लिए दुखी हैं और घायलों के साथ हैं। संत पापा उन लोगों के साथ हैं जो हिंसा के बीच भी हिम्मत के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। संत पापा लियो 14वें ने सभी को यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं सभी से यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि यह युद्ध खत्म हो जाए। आइए हम प्रभु से बातचीत के रास्ते खोलने, नफरत को खत्म करने और एक सही एवं स्थायी शांति को मुमकिन बनाने के लिए कहें। और संत पापा लियो 14वें ने बुधवार आम दर्शन समारोह से पहले लैटिन अमेरिकी संगठनों, बाल संरक्षण में अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह संगठन गलत व्यवहार को रोकने और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। संत पापा ने कहा कि उन्हें अलग अलग लैटिन अमेरिकी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। संत पापा ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि कलीसिया में सभी जगहें, चाहे वे प्रत्यक्ष हो या आभासी, सच में यीशु ख्रीस्त के साथ एक फायदेमंद मुलाकात की जगह बने जो डर, भय या संदेह से मुक्त हो। संत पापा ने उन्हें यह सोचने के लिए आमंत्रित किया कि कैसे पहले शिष्य, जब वे यीशु मसीह से मिले, वे मोहित हो गए थे। एक ऐसा पल जिसने उनकी जिंदगी को खास बनाया और उन्हें बदलने का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उन्होंने बिना किसी झिझक के खुद को यीशु को समर्पित किया। संत पापा ने कहा कि वह अनुभव कोई पुरानी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग फिर से जी उठे प्रभु से मिलने और प्रभु के साथ प्यार का सच्चा अनुभव करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन इस पाने के लिए, संत पापा लियो ने जोर देकर कहा, यह जरूरी है कि हमारे पास सुरक्षित जगहें हों। संत पापा ने कहा कि दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाता है और किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक और इंसानी विकास में रुकावट डालता है। संत पापा ने कहा कि प्रभु के चेतावनी पर ही केंद्र ने अपना मिशन शुरू किया। जब मसीह ने चेतावनी दी कि छोटों के लिए बदनामी का कारण न बने, संत पापा ने याद किया कि पिछले हफ्ते स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान उन्होंने धर्माध्यक्षों से
उन लोगों के दर्द के बारे में बात की थी जिन्हें उन लोगों ने चोट पहुंचाई है, जिन्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, और उन्हें ऐसी स्थितियां बताया जिनसे पहले कलीसिया समुदाय को सुनने, सच्चाई, न्याय, मुआवजे और रोकथाम एवं देखभाल की संस्कृति के लिए और ज्यादा पक्के इरादे के साथ जवाब देने के लिए कहा जाता है। उधर कास्टल गंडोल्पो में परमाध्यक्ष निवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने अमेरिका और ईरान के बीच हालिय समझौता ज्ञापन, स्पेन की अपनी हालिय प्रेरित यात्रा, प्रवास के विषय और SSPX के आसन धर्माध्यक्ष अभिषेक पर विचार किया। कास्टल गंडोल्पो में विल्ला बारबरेनी से बाहर खड़े होकर, जहां उन्होंने हमेशा की तरह अपना मंगलवार का दिन आराम करने और काम करने में बिताया था, संत पापा उन पत्रकारों से बात करने के लिए रुके। उन्होंने स्पैनिश मीडिया के उन लोगों के साथ अपनी बात शुरू की जो टेनेरिप से वापसी उड़ान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण अनुत्तरित रह गए थे, जिसके कारण संत पापा लियो को एक अलग विमान से वापस लौटना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बारे में पूछे जाने पर संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर का शुक्र है, कम से कम यह ज्ञापन तो है, जिस पर वे शुक्रवार को आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। और संत पापा लियो 14वें ने इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा मनाए जाने वाले जीवन दिवस 2026 के लिए भेजे गए अपने संदेश में अपने बच्चों, खासकर छोटे बच्चे को खोने का दुख मना रहे माता पिताओं के लिए प्रार्थना और आध्यात्मिक निकटता प्रदान की। संत पापा का यह संदेश वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने 21 जून को होने वाले सालाना कार्यक्रम से पहले महाधर्माध्यक्ष जॉन शेरिंगटन को भेजा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू

0: अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

बुद्धिमान के सदृश कौन है? सृष्टि का रहस्य कौन जानता है? प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता को दूर कर देती है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। तुम उसके यहाँ उतावली में नहीं जाओ। तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है। कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं? श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 16 पदों वाले उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश्वर की योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। समझदार व्यक्ति कौन है, यह सवाल कर सुलेमान एक ऐसे समझदार और विवेकी व्यक्ति की तलाश करता है जो कि विवेकी और प्रज्ञावान होने के नाते सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करता हो। वह जानता था कि केवल समझदारी ही इंसान को खुश रख सकती थी। समझदारी ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकती थी। समझदारी से ही वह अपने सारे काम अच्छी तरह से निपटा सकता था। इसीलिए हम सबसे आग्रह करता है कि हम समझदार बने तथा समझदारी से, बुद्धिमानी से अपने सारे कार्यों को संपादित करें। कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। श्रोताओं, इस स्थल पर हमने आपको रोमियों को प्रेषित संत पॉल के पत्र के 13वें अध्याय में निहित बात का स्मरण दिलाया था, जिसमें संत पॉल भी यही समझाते हैं कि अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। फिर लिखते हैं, जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है और अपने पर दंड आज्ञा को बुलाता है। कहते हैं, शासकों से भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप भय मुक्त होना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे यानी कि अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। श्रोताओं, शासन के अधीन रहने से ही समाज में व्यवस्था कायम रहती है। हम अधिकारियों के अधीन इसलिए नहीं रहें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस धरती पर वे हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके सम्मान के द्वारा हम दर्शा देते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अस्तु, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण हम अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें। हम यह माने कि जीवन के गहन रहस्य, अन्याय, दुख और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उससे आगे देखने की जरूरत है। अंत को नहीं, अनंत को देखने की आवश्यकता है। ईश्वर की योजना को पहचानने की आवश्यकता है।

आगे 8वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों में राजा और शासक के ही संदर्भ में उपदेशक कहता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। इन पदों में उपदेशक ने हम सबको ईश नियमों का स्मरण दिलाया है। वह कहता है कि जो ईश नियमों का पालन करता है उसका कभी भी अनिष्ट या कोई नुकसान नहीं होगा। इस धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि रूप में हमारे समक्ष रहने वाले हमारे माता पिता, हमारे कार्यस्थलों पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी या फिर राजा शासक, जिन्हें भी हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सुखी होंगे, हमारा भला होगा। उपदेशक यह भी कहता है कि हर काम का एक उचित समय और तरीका होता है और उसी तरह हमें अपने कामों का संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तब उसका दुख अनायासी बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उपदेशक हमें याद दिलाता है कि हर काम का या हर मामले का एक निश्चित समय होता है और एक सुनिश्चित तरीका होता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति यह जान लेता है कि उसे कब क्या करना है, तथापि वह सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ का फैसला अपने आप नहीं ले सकता। उसे भी मौन रहकर कुछ प्रार्थना और कुछ चिंतन के बाद ही यह विवेक मिलता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, उसे कब करें और उसे किस तरह पूरा करें। आगे इसी अध्याय के अग्रिम पदों में, यानी कि 6 से लेकर 8 तक के पदों में उपदेशक कहता है, मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बाइबल आचार्य मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ी समझदारी चीजों को या स्थितियों को जैसी हैं वैसी ही मान लेना। उपदेशक कहता है कि अपने प्राणों पर किसी को अधिकार नहीं होता, किसी के पास वह शक्ति नहीं होती कि वह मौत के दिन को रोक ले, और इसीलिए ईश नियमों के अनुपालन का मार्ग दिखलाता है। जीवन पर उसकी समझ की कमी ने ही सुलेमान को निराश कर दिया था। तब वह समझ पाया कि मौत के सामने इंसान की बेबसी और भी ज्यादा निराशाजनक होती है। उसने देखा कि मौत किसी को जीतने नहीं देती और उस लड़ाई से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो उसकी यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें हिंसा एवं विभाजन से भरी दुनिया में उम्मीद, शांति और एकता की रोशनी बनने की हिम्मत दी। पोप ने कहा, ऐसे समय में जब अक्सर हिंसा एवं तीखी बयानबाजी होती है, आपकी अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी समुदाय के सदस्य सच्ची शांति के निर्माता बने। एक ऐसी शांति जो बिना हथियार के हो, विनम्र हो और मजबूत हो एवं लोगों के बीच मेल जोल के लिए काम करे। पोप ने अपने संदेश की शुरुआत उनका स्वागत करते हुए की और उम्मीद जताई कि उनका यहाँ होना उन्हें वैटिकन सिटी और रोम दोनों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका देगा, जो न सिर्फ ख्रिस्ते धर्म की शुरुआत एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐसे जगह भी है जिससे हजारों सालों से संस्कृतियों और लोगों से मिलने को बढ़ावा दिया है। उन्होंने याद किया कि यूनिवर्सिटी लंबे समय से मिलने जुलने की जगह रही है, जो विद्यार्थियों और विभाग को प्रज्ञा में बढ़ने के लिए एक साथ लाती है। उन्होंने माना कि यह हमेशा आसान नहीं होता। यूनिवर्सिटी को लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि अर्थपूर्ण मुलाकातों के मौके मिलते रहें। उन्होंने कहा कि यह किसी भी उच्च प्रशिक्षण संस्थान के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी भाषाएं और हमारी संस्कृतियां, इंसान के रूप में हम कौन हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। पोप लियो ने कहा कि मिलने जुलने के सार्वजनिक जगहों के रूप में यूनिवर्सिटी पारंपरिक रूप से बातचीत के लिए एक खास स्थल रहे हैं, जहां ज्ञान की खोज शैक्षणिक समुदाय के अंदर विचारों के लेन देन से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा, ऐसे माहौल में जहां सम्मानपूर्वक बातचीत संभव हो, हर कोई दूसरों के नजरिए और साक्षात जीवन से सीखकर ज्ञान बढ़ा सकता है, यहां तक कि उनसे भी जिनसे वे सहमत नहीं हो सकते। पोप लियो ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ऐसे हालात में धैर्य एवं लगन से धीरे धीरे गलतफहमी और भरोसे की किसी भी रुकावट को तोड़ने की दिशा में काम करना संभव है। संत पापा ने कहा कि ईश्वर हमसे दुनिया में शांति लाने के लिए अपने माध्यम बनने के लिए कहते हैं, जिसके लिए हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। उन्होंने कहा, शांति को नामुमकिन एवं हमारी पहुंच से बाहर बनाने के बजाय हमें इसे अपने समुदायों में बढ़ावा देना चाहिए और अपने जीवन में इसका स्वागत करना चाहिए। अंत में पोप ने उम्मीद जताई कि शांति निर्माताओं को तैयार करके यूनिवर्सिटी समुदाय एक ऐसी दुनिया में उम्मीद एवं एकता की किरण बन सकता है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। पोप लियो 14वें ने स्पैनिश सिविल युद्ध के दौरान धर्म से नफरत में शहीद हुए 20 पुरोहितों के संत बनने और 5 ईश सेवकों के विरोचित सद्गुणों को मान्यता दी, जिनका जीवन मिशनरी जोश, उदारता, प्रार्थना और कलीसिया की निष्ठापूर्ण सेवा से पहचाना जाता है। संत पाप लियो 14वें ने वैटिकन के संत प्रकरण विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के साथ एक मुलाकात में संत घोषणा हेतु नए उम्मीदवारों की आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया। ईश सेवक शहीद जुआन तेरेस और उनके 19 साथी जो धर्म प्रांतीय पुरोहित थे, वे स्पेन में अगस्त और सितंबर 1936 के बीच विश्वास के प्रति घृणा के कारण अत्याचार के शिकार हुए। ईश सेवक जूलियो मारिया दी लोम्बार्दे पौत्र परिवार को समर्पित मिशनरी धर्म संघ के सदस्य एवं मरिया के निष्कलंक हृदय की पुत्रियों के धर्म संघ, पौत्रतम संस्कार की कुंवारी मरियम के मिशनरी धर्म संघ और पौत्रतम संस्कार के हमारे प्रभु की धर्म बहनों के धर्म संघ के संस्थापिका थी। उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था। ईश सेविका मरिया तेरेसा तालोन निष्कलंक मरिया के पल्ली दौरे के लिए समर्पित धर्म संघ की संस्थापिका है। उनका जन्म 10 मार्च 1954 को अमेरिका में हुआ था। ईश सेविका मरिया अग्नेस त्रिवियोली सन जोसेफ के धर्मी सेवक धर्म संघ के सदस्य और संस्थापिका थी। उनका जन्म 20 अप्रैल 1879 को इटली में हुआ था। ईश सेविका क्लारा एंड्रू वाई मालफेरी इंका के संत बर्थोलोमियो के जेरोम मठ की मठवासी थी और ईश सेविका मरिया पेत्रा जोर्दानो प्रचारकों के ऑर्डर की मठवासी धर्म बहन थी। उनका जन्म 4 जुलाई 1912 को इटली में हुआ था और निधन 21 जून 2006 को इटली में हुआ।
भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल 2026 पर चिंताओं के बीच 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने का आह्वान किया है। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने देश भर के सभी कैथलिकों से रविवार 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने की अपील की है। यह अपील प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन बिल 2026 से जुड़ी चिंताओं के जवाब में की गई है। उम्मीद है कि इस बिल पर संसद के आने वाले मानसून सत्र में चर्चा होगी। भारत में कार्तिक कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों को भेजे गए एक पत्र में सीबीसीआई के अध्यक्ष कार्डिनल एंटोनी फुले ने सभी विश्वासियों को देश, सरकारी अधिकारियों और सेवा के अपने मिशन को कलीसिया स्वतंत्र पूर्वक जारी रख सके, इसके लिए प्रार्थना में एक साथ आने हेतु आमंत्रित किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून ने पूरे देश में कलीसियाओं और क्रिश्चियन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले चैरिटेबल, शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक प्रेरिताएं पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता पैदा की है। समाज के गरीब, हाशिए पर पड़े और कमजोर तबके की सेवा करने की कलीसिया के लंबे समय से चले आ रहे समर्पण को याद करते हुए कार्डिनल पुले ने इस बात पर जोर दिया है, ये प्रेरिताय प्यार, न्याय एवं दया के सुसमाचारी मूल्यों का एक ठोस उदाहरण है। विश्वास एवं एकता की भावना का आह्वान करते हुए सीबीसीआई अध्यक्ष ने दूसरे कलीसियाओं और ख्रिस्त समुदायों के साथ मिलकर चिंतन एवं प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने विश्वासियों को पौत्र मिस्सा, पौत्र संस्कार की आराधना, रोजरी माला विनती, प्रार्थना सभा और स्वेच्छा से उपवास द्वारा ईश्वर की प्रज्ञा, मार्गदर्शन और सुरक्षा पाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बोर्गो वार्ता हमारे आम घर की देखभाल पर बातचीत के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्घाटन कस्तिल गंदोल्फो स्थित पोप के उद्यान में हो रहा है। पर्यावरण के प्रतिनिधियों ने लाउदातो सी गांव में वैश्विक मैत्री लॉन्च किया। 17 से 19 जून 2026 तक बोर्गो लाउदातो सी या लाउदातो सी गांव बोर्गो लाउदातो सी वार्ता के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

बुद्धिमान के सदृश कौन है? सृष्टि का रहस्य कौन जानता है? प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता को दूर कर देती है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। तुम उसके यहाँ उतावली में नहीं जाओ। तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है। कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं? श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 16 पदों वाले उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश्वर की योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। समझदार व्यक्ति कौन है, यह सवाल कर सुलेमान एक ऐसे समझदार और विवेकी व्यक्ति की तलाश करता है जो कि विवेकी और प्रज्ञावान होने के नाते सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करता हो। वह जानता था कि केवल समझदारी ही इंसान को खुश रख सकती थी। समझदारी ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकती थी। समझदारी से ही वह अपने सारे काम अच्छी तरह से निपटा सकता था। इसीलिए हम सब से आग्रह करता है कि हम समझदार बने तथा समझदारी से, बुद्धिमानी से अपने सारे कार्यों को संपादित करें। कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। श्रोताओ, इस स्थल पर हमने आपको रोमियों को प्रेषित संत पॉल के पत्र के 13वें अध्याय में निहित बात का स्मरण दिलाया था, जिसमें संत पॉल भी यही समझाते हैं कि अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। फिर लिखते हैं, जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है और अपने पर दंड आज्ञा को बुलाता है। कहते हैं, शासकों से भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप भय मुक्त होना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे यानी कि अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। श्रोताओ, शासन के अधीन रहने से ही समाज में व्यवस्था कायम रहती है। हम अधिकारियों के अधीन इसलिए नहीं रहें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस धरती पर वे हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके सम्मान के द्वारा हम दर्शा देते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अस्तु, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण हम अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें। हम यह माने कि जीवन के गहन रहस्य, अन्याय, दुख और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उससे आगे देखने की जरूरत है। अंत को नहीं, अनंत को देखने की आवश्यकता है। ईश्वर की योजना को पहचानने की आवश्यकता है।

आगे 8वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों में राजा और शासक के ही संदर्भ में उपदेशक कहता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। इन पदों में उपदेशक ने हम सबको ईश नियमों का स्मरण दिलाया है। वह कहता है कि जो ईश नियमों का पालन करता है उसका कभी भी अनिष्ट या कोई नुकसान नहीं होगा। इस धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि रूप में हमारे समक्ष रहने वाले हमारे माता पिता, हमारे कार्यस्थलों पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी या फिर राजा शासक, जिन्हें भी हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सुखी होंगे, हमारा भला होगा। उपदेशक यह भी कहता है कि हर काम का एक उचित समय और तरीका होता है और उसी तरह हमें अपने कामों का संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तब उसका दुख अनायासी बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उपदेशक हमें याद दिलाता है कि हर काम का या हर मामले का एक निश्चित समय होता है और एक सुनिश्चित तरीका होता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति यह जान लेता है कि उसे कब क्या करना है, तथापि वह सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ का फैसला अपने आप नहीं ले सकता। उसे भी मौन रहकर कुछ प्रार्थना और कुछ चिंतन के बाद ही यह विवेक मिलता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, उसे कब करें और उसे किस तरह पूरा करें। आगे इसी अध्याय के अग्रिम पदों में, यानी कि 6 से लेकर 8 तक के पदों में उपदेशक कहता है, मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बाइबल आचार्य मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ी समझदारी चीजों को या स्थितियों को जैसी हैं वैसी ही मान लेना। उपदेशक कहता है कि अपने प्राणों पर किसी को अधिकार नहीं होता, किसी के पास वह शक्ति नहीं होती कि वह मौत के दिन को रोक ले, और इसीलिए ईश नियमों के अनुपालन का मार्ग दिखलाता है। जीवन पर उसकी समझ की कमी नहीं सुलेमान को निराश कर दिया था, तब वह समझ पाया कि मौत के सामने इंसान की बेबसी और भी ज्यादा निराशाजनक होती है। उसने देखा कि मौत किसी को जीतने नहीं देती और उस लड़ाई से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो उसकी यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें हिंसा एवं विभाजन से भरी दुनिया में उम्मीद, शांति और एकता की रोशनी बनने की हिम्मत दी। पोप ने कहा, ऐसे समय में जब अक्सर हिंसा एवं तीखी बयानबाजी होती है, आपकी अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी समुदाय के सदस्य सच्ची शांति के निर्माता बने। एक ऐसी शांति जो बिना हथियार के हो, विनम्र हो और मजबूत हो एवं लोगों के बीच मेल जोल के लिए काम करे। पोप ने अपने संदेश की शुरुआत उनका स्वागत करते हुए की और उम्मीद जताई कि उनका यहाँ होना उन्हें वैटिकन सिटी और रोम दोनों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका देगा, जो न सिर्फ ख्रिस्ते धर्म की शुरुआत एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐसे जगह भी है जिससे हजारों सालों से संस्कृतियों और लोगों से मिलने को बढ़ावा दिया है। उन्होंने याद किया कि यूनिवर्सिटी लंबे समय से मिलने जुलने की जगह रही है, जो विद्यार्थियों और विभाग को प्रज्ञा में बढ़ने के लिए एक साथ लाती है। उन्होंने माना कि यह हमेशा आसान नहीं होता। यूनिवर्सिटी को लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि अर्थपूर्ण मुलाकातों के मौके मिलते रहें। उन्होंने कहा कि यह किसी भी उच्च प्रशिक्षण संस्थान के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी भाषाएं और हमारी संस्कृतियां, इंसान के रूप में हम कौन हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। पोप लियो ने कहा कि मिलने जुलने के सार्वजनिक जगहों के रूप में यूनिवर्सिटी पारंपरिक रूप से बातचीत के लिए एक खास स्थल रहे हैं, जहां ज्ञान की खोज शैक्षणिक समुदाय के अंदर विचारों के लेन देन से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा, ऐसे माहौल में जहां सम्मानपूर्वक बातचीत संभव हो, हर कोई दूसरों के नजरिए और साक्षात जीवन से सीखकर ज्ञान बढ़ा सकता है, यहां तक कि उनसे भी जिनसे वे सहमत नहीं हो सकते। पोप लियो ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ऐसे हालात में धैर्य एवं लगन से धीरे धीरे गलतफहमी और भरोसे की किसी भी रुकावट को तोड़ने की दिशा में काम करना संभव है। संत पापा ने कहा कि ईश्वर हमसे दुनिया में शांति लाने के लिए अपने माध्यम बनने के लिए कहते हैं, जिसके लिए हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। उन्होंने कहा, शांति को नामुमकिन एवं हमारी पहुंच से बाहर बनाने के बजाय हमें इसे अपने समुदायों में बढ़ावा देना चाहिए और अपने जीवन में इसका स्वागत करना चाहिए। अंत में पोप ने उम्मीद जताई कि शांति निर्माताओं को तैयार करके यूनिवर्सिटी समुदाय एक ऐसी दुनिया में उम्मीद एवं एकता की किरण बन सकता है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। पोप लियो 14वें ने स्पैनिश सिविल युद्ध के दौरान धर्म से नफरत में शहीद हुए 20 पुरोहितों के संत बनने और 5 ईश सेवकों के विरोचित सद्गुणों को मान्यता दी, जिनका जीवन मिशनरी जोश, उदारता, प्रार्थना और कलीसिया की निष्ठापूर्ण सेवा से पहचाना जाता है। संत पाप लियो 14वें ने वैटिकन के संत प्रकरण विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के साथ एक मुलाकात में संत घोषणा हेतु नए उम्मीदवारों की आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया। ईश सेवक शहीद जुआन तेरेस और उनके 19 साथी जो धर्म प्रांतीय पुरोहित थे, वे स्पेन में अगस्त और सितंबर 1936 के बीच विश्वास के प्रति घृणा के कारण अत्याचार के शिकार हुए। ईश सेवक जूलियो मारिया दी लोम्बार्दे पौत्र परिवार को समर्पित मिशनरी धर्म संघ के सदस्य एवं मरिया के निष्कलंक हृदय की पुत्रियों के धर्म संघ, पौत्रतम संस्कार की कुंवारी मरियम के मिशनरी धर्म संघ और पौत्रतम संस्कार के हमारे प्रभु की धर्म बहनों के धर्म संघ के संस्थापिका थी। उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था। ईश सेविका मरिया तेरेसा तालोन निष्कलंक मरिया के पल्ली दौरे के लिए समर्पित धर्म संघ की संस्थापिका है। उनका जन्म 10 मार्च 1954 को अमेरिका में हुआ था। ईश सेविका मरिया अग्नेस त्रिवियोली सन जोसेफ के धर्मी सेवक धर्म संघ के सदस्य और संस्थापिका थी। उनका जन्म 20 अप्रैल 1879 को इटली में हुआ था। ईश सेविका क्लारा एंड्रू वाई मालफेरी इंका के संत बर्थोलोमियो के जेरोम मठ की मठवासी थी और ईश सेविका मरिया पेत्रा जोर्दानो प्रचारकों के ऑर्डर की मठवासी धर्म बहन थी। उनका जन्म 4 जुलाई 1912 को इटली में हुआ था और निधन 21 जून 2006 को इटली में हुआ।
भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल 2026 पर चिंताओं के बीच 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने का आह्वान किया है। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने देश भर के सभी कैथलिकों से रविवार 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने की अपील की है। यह अपील प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन बिल 2026 से जुड़ी चिंताओं के जवाब में की गई है। उम्मीद है कि इस बिल पर संसद के आने वाले मानसून सत्र में चर्चा होगी। भारत में कार्तिक कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और

किया है। ये प्रेरिता प्यार, न्याय एवं दया के सुसमाचारी मूल्यों का एक ठोस उदाहरण है। विश्वास एवं एकता की भावना का आह्वान करते हुए सीबीसीआई अध्यक्ष ने दूसरे कलीसियाओं और ख्रिस्त समुदायों के साथ मिलकर चिंतन एवं प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने विश्वासियों को पौत्र मिस्सा, पौत्र संस्कार की आराधना, रोजरी माला, विनती, प्रार्थना सभा और स्वेच्छा से उपवास द्वारा ईश्वर की प्रज्ञा, मार्गदर्शन और सुरक्षा पाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बोर्गो वार्ता हमारे आम घर की देखभाल पर बातचीत के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्घाटन कस्तेल गंदोल्फो स्थित पोप के उद्यान में हो रहा है। पर्यावरण के प्रतिनिधियों ने लौदातो सी गांव में वैश्विक मैत्री लॉन्च किया। 17 से 19 जून 2026 तक बोर्गो लौदातो सी या लौदातो सी गांव बोर्गो लौदातो सी वार्ता के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।